0: चेचेड़ कतेरा कतेरा ये बेसी दाना वाला नहीं रहेगा, दाना वाला नहीं चाहिए, क्या बीस रुपये खाली बीस रुपये बोलो। माई डैड when he's only 14 he came to India. Hey, can I after can I what? Hello, because of the World War II, there's no way to go, and they recovered that. Kolkata, India is a very good place and it's easy to earn living, so he came to Calcutta and from then he stay in India. He never wants to go back to China again.
1: आप फिर आइएगा, हम जानता है आपको एक धमाल करा।
0: कितना हुआ, कितना पीस हुआ?
1: 5 पीस अभी हुआ। हाँ
0: बस
1: 20 किलो आप लेते हैं?
0: बस बस भिंडी अच्छा नहीं लग रहा, आधा किलो भिंडी दे। Okay, yeah. Dona. Can I what? Khali 20 rupees.

अच्छा गौरव कल मंडे का 4 बजे हम लोग का ट्रक को अरेंज करना है. हम लोग एक इनोवा जाएगा तो एक छोटा हाथी से थोड़ा बड़ा वाला है ये वाला ऐसा वाला. हम लोग का पूरा टीम आधा टीम वहाँ में जाएगा और किसी को आपका साथ गाड़ी में बैठ जाएगा. टिटिक बाजार, टिटिक बाजार, टुंगान चर्च का सामने.